0: रहे हैं वो साहब संजय बबुआ के एमडी बनने के बाद ही हुए कि नहीं? जवाब सच्ची सच्ची बताओ कि वो या तो खुद ही छलेड़ा है या इतना मनहूस के छलेड़ा उनमें घुस के हम लोगों को तंग कर रहा है। हाँ,
1: ये तो गंभीर बात है।
2: आए, मुझे लग रहा है कि बुखार हो रहा है। अरे अरे, छू कर देखना।
0: एक और भैया।
1: हाँ, हाथ तो गर्म लग रहा है, ये तो गड़बड़ है।

0: Has anyone seen my pen? Yeah, Ravi, you've taken my pen award.
1: No, man.
0: Ravi, give it, yaar. I know you've taken it.
1: Shak? Aur wo bhi ek dost ka?
0: Yaar, Ravi?
2: Maine chori nahi ki. Main chor nahi hu. Main bhooka mar jaunga, par chori nahi karunga. आपने एक सच्चे इंसान की खुददारी को ललकारा है, खुददारी को। मैं जा रहा हूँ, लात मारता हूँ ऐसी नौकरी पर। अथू
3: बिफोर यू मूवीज, फिल्मी, वेरी फिल्मी।

0: पुरुषों को मक्खन सा सहलाती रहे। गेयरिंग की खिच खिच हटाए, खिच खिच गेयरिंग की भी जाए, गाड़ी को बिन आवाज के भगाती चले।
1: असली ग्रीस खरीदिए कैस्ट्रॉल ग्रीस।

0: ये मंद्र मंद्र वायलिन की आवाज आपके कानों में पड़ रही है। आज के हमारे दोपहर एफएम की पर्सनालिटी यानी विशेष व्यक्तित्व है गायत्री शंकर, जानी मानी वायलिन वादिका।
1: रेडियो बांग्लादेश ढाका

कार्यक्रम में आइए आप सुनते हैं प्रतिघात फिल्म का गीत, मोहम्मद अजीज, सुशील कुमार और साथियों की आवाजों में। शब्द और संगीत रविंद्र जैन का है।

आकाशवाणी का ये पंचरंगी कार्यक्रम है विविध भारती, आपकी फरमाइश। लीजिए सुनिए अपनी पसंद के फिल्म की।

0: सुनो ही।
1: चलो तो मुसाफिर उड़ गए रे उड़ने वाली चिड़िया।
2: ये है असली विंडोज का असली ऑफर, खरीदिए स्टिकर वाला विंडोज XP PC SMS असली 7272 पे।
3: प्रेजेंटिंग लिवॉन सिल्की ह्यूज, जो कलर्ड और डाइड बालों की रफनेस दूर करे, उन्हें बनाए स्मूथ और शाइनी।
4: बजाज वाटर हीटर्स, झटपट गरम गर्मा गरम।
5: एवरी मोमेंट मोर स्पेशल विद टाटा टी गोल्ड।
1: मम्मी भैया डॉक्टर है, उड़ नहीं पाएंगे।
6: खजुराहो शरीर पकारी देखो, भीमबेट का कलाकारी देखो, कट्टर प्रेम पुजारी देखो, आंखें नीचे नीचे देखो, आंखें फाड़ फाड़ देखो।
7: उसमें से निकला कछुआ, पर जय हो पंखों वाली मैया, तुमने उसे भी गोद लिया।
6: सतपुरा

这是把那骨头嘛看他给给嘛发出把那个布鲁库那个的皮呢别让他干嘛你上不去来打给了两处我那个发出我不哭的干净的哭是可以还是可以嘛熬了ये तालीशा ये तारा पाशा कौती सीधा ये कौती टूटा ये।

खती खतारी कलम लाए धान बकुरो पोदै बकुर तिखा तिखा तारी कलम लाए यो धानरे पुरो टपक कई मोर लाग तो मेरी का